और इस गाने से पहले चूंकि हम बात कर रहे थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, तो फिर चलिए उन्हीं के रानी महल मैं आपको लेकर चलती हूँ, जिसकी दीवारों और छत पर आप कई रंगों से सजी खूबसूरत नक्काशी देखते हैं। और हिस्ट्री में अगर है आपकी दिलचस्पी तो जरूर घूमिए झांसी म्यूजियम भी, जो न सिर्फ झांसी बल्कि पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर आपको दिखाएगा, साथ ही रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़े भी कई पहलू आप यहां जानेंगे। चंदेल और गुप्त राजवंश के समय के हथियार, सिक्के, पांडुलिपियां और प्राचीन मूर्तियां भी यहां पर सहेज कर रखी गई हैं, जिन्हें आप देखिए और जुड़ जाइए हमारे इतिहास से। और इसके बाद बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा झांसी का हिस्टोरिकल किला, जिसे देखने ही यकीनन ज्यादातर टूरिस्ट झांसी आते हैं। झांसी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो बंगरा नाम की पहाड़ी पर मौजूद है और जिसे 17th सेंचुरी में बनवाया गया था ओरछा के राजा बीर सिंह देव के द्वारा। किले के अंदर वो जगह आपको सबसे पहले देखनी चाहिए जहां से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल पर सवार अपने बेटे को पीठ पर बांधकर कूदी थीं। और इसके साथ ही किले के अंदर आप देखेंगे कई कड़क बिजली तोप, गुलाम गौस खान की मजार, शिव मंदिर और गणेश मंदिर भी हैं यहां, जहां रानी और राजा गंगाधर राव का विवाह हुआ था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हरगिज मिस नहीं करना यहां शाम को होने वाला लाइट एंड साउंड शो, जो झांसी के संपूर्ण इतिहास को आपके सामने लाकर रख देगा, वो भी बड़ी ही खूबसूरती से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं प्राची सिंह, बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा।

Magandan. नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। जिंदगी में असली सुकून और आनंद बड़ी बड़ी सफलताओं से ज्यादा रोजाना मिलने वाले छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। जी हाँ, बड़ी बड़ी बातों में क्या रखा है, चलो आज छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं। भाग दौड़ भरी इस मसरूफ जिंदगी में सुकून के कुछ हसीन लम्हे बुनते हैं। सुबह की वो चाय और चाय की वो पहली चुस्की और खिड़की से आती धूप की वो मुस्कान, पौधों पर महकती हुई नई नई कलियां जैसे कह रही हूं, थम जा ए इंसान। माँ के हाथों के खाने का वो अनोखा स्वाद और बरसों पुराने किसी मित्र की याद, रास्ते में चलते हुए गीत सुनना या कहीं सुरीला गीत सुनना और अकेले बैठकर नए नए सपने बुनना, बड़ी खुशियों के इंतजार में हर पल को यूं न गंवाना। ये छोटी छोटी राहें ही मंजिल तक ले जाएंगी, बस हर एक छोटे पल को दिल से मुस्कुरा कर जीना। जी हाँ, यही तो जिंदगी है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म का ये गीत सुना। जी हाँ, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। अगर हम यही सोच लें कि हर पल में खुशियां ढूंढें तो क्या नहीं मिल सकता। और हमारे घर की जो महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं का ये खास कार्यक्रम है घर आंगन, तो हम महिलाओं से तो बात जरूर करेंगे, महिलाओं के लिए ही है और महिलाएं तो ढूंढती भी हैं। सबसे ये अनुरोध है कि हर पल में खुशियां ढूंढिए। अगर आप खुशियां ढूंढेंगे तो खुशियां ही मिलेंगी, और अगर तनाव का माहौल में भी खुशियां अगर आपने ढूंढ ली तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए आकाशवाणी मना रहा है अपने 90 वर्षों का सफर, ध्वनि तरंगों की ताल पर चलता है ये सफर। आकाशवाणी एक ऐसी विरासत जो आज भी जीवित है। आकाशवाणी का साधारण सा दिल्ली स्टेशन अब एक ऐसा केंद्र बन गया जहां आवाजों को पंख मिले, इतिहास को एक माइक मिला, इन शांत दीवारों से ऐसी गूंज निकली जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक कालातीत, भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। आकाशवाणी का बाह्य सेवा विभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज पहुंचाता है और प्रवासी भारतीयों को जोड़ता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए AIR का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस विशाल देश के प्रत्येक निवासी को विभिन्न भूभागों में 2400 घंटे 7 दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार और विचार उपलब्ध करवाता है। जी हाँ, ये है आकाशवाणी। अब आकाशवाणी पे राम

रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग ऐतिहासिक रूप से हुई। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। 1980 में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र ने रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग आरंभ की। ये परियोजना भोपाल केंद्र के तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर समर बहादुर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में शुरू की गई। गोस्वामी तुलसीदास के इस महान महाकाव्य के सातों कांडों को रिकॉर्ड करने के लिए 14 लोक कलाकारों की एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें ब्रज भूषण वसु, सुरेखा केलकर, जयश्री थत्ते और रामकिशन चंदेसरी जैसे नाम शामिल थे। रिकॉर्डिंग की यह लंबी प्रक्रिया 1980 से 1992 तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 62 घंटे से अधिक समय का एक विशाल और सुरीला संकलन तैयार हुआ। जी हाँ, रामचरितमानस। अपनी प्रामाणिकता और मधुर प्रस्तुति के कारण ये संस्करण हिंदी भाषी क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय हुआ और इसे आकाशवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे डिजिटल सीडी के रूप में भी जारी किया गया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी रेडियो दोस्त राधा पाठक। अब हम अपनी महिलाओं से इतनी सारी बातें हर बार करते हैं, रोज करते हैं, आके बताते हैं उनको। अब देखिए मिशन लाइफ के 7 प्रमुख विषय हैं, कुछ दैनिक कार्य हैं और हमारी महिलाएं इन बातों को समझ भी रही हैं और बहुत सारी महिलाओं ने तो हमारी जो बातों को है वो सीरियसली भी लिया है। अब आज जो मैं बताने वाली हूँ ना उसे बिल्कुल सीरियस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर इस पे अमल करते हैं तो। अब मिशन लाइफ के ना 7 थीम्स होते हैं जो दैनिक आदतों में हमें शामिल करने चाहिए। अब विश्व पर्यावरण दिवस 2026 में ठोस कचरा प्रबंधन नियम है, मतलब जो 7 आदतें हैं उसमें से एक आदत है कि जो कचरा आपके घर से निकलता है वो रिसाइकिल होना चाहिए और जो ई वेस्ट कचरा है वो आप घटाएं अपना। तो इसके लिए है कि भोजन को बर्बाद होने से बचाएं, शादी विवाह समारोह में जो आप जाते हैं बर्तनों डिस्पोजेबल बर्तन जो होते हैं उसकी जगह पारंपरिक और दोबारा इस्तेमाल वाले बर्तनों का उपयोग करें। घर में भी ऐसा ही करें, ज्यादा मेहमान आ जाएं तो ज्यादा प्लेट्स हो जाएं मांजनी पड़ेंगी कोई बात नहीं, लेकिन आप डिस्पोजेबल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे कचरा बहुत ज्यादा होता है। अपने मोबाइल और लैपटॉप को बार बार बदलने की बजाय रिपेयर कराकर उसका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। इसे ई जो वेस्ट है ई कचरा है वो घटाया जा सकता है। अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स को केवल अधिकृत ई कचरा रिसाइकल्स को ही सौंपना चाहिए, यानी कि आपका लैपटॉप खराब हो गया तो आप ऐसे ही जाने दें उसे, या कोई मोबाइल है पुराना तो वो आपको एक अधिकृत ई कचरा वाले को ही देना है। अब देखिए स्रोत पर ही कचरे के 4 स्ट्रीम का जो है अलग अलग किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है कूड़े का। अब ज्यादातर आप लोगों ने जगह जगह दीवारों पर भी लिखा है गीला कचरा, सूखा कचरा, हरा डस्टबिन, नीला डस्टबिन। बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो

आप जान जाएंगे कि बहुत जरूरी चीजें हैं कि गीला कचरा कहाँ जाना चाहिए, सूखा कचरा कहाँ जाना चाहिए। गीला कचरा यानी जो आपका वेट वेस्ट है, यानी रसोई का कचरा, बचा हुआ भोजन, फलों और सब्जियों के छिलके, इन्हें खाद या बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और नए नियमों के तहत अब हर नागरिक को, हर गृहस्थ के लिए कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर कूड़ा देना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। इसलिए अपने घर में ही इसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है कि हम सूखा कचरा अलग रखें, गीला कचरा अलग रखें। जो ड्राई वेस्ट है उसमें प्लास्टिक, कागज, गत्ता, धातु, कांच और रबड़, इसे रिसाइकिलिंग के लिए अलग से भेजा जाता है। अब सिंगल यूज यानी एक बार यूज होने वाले प्लास्टिक को बिल्कुल ना कह दें, ताकि कचरा कम हो। और ई वेस्ट भी घटाना बहुत जरूरी है। ये कदम जो होते हैं ना पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे तरफ से उठाए गए छोटे छोटे कदम है ना, वो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ताकि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, हम अगर छोटे छोटे बदलाव करें नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप इस छोटी छोटी आदतों को अपनाएं। कहीं भी जाकर डिस्पोजेबल में आप चाय पीते हैं तो ना पीजिए, अपना स्टील का एक ग्लास अपने साथ रखिए, या जैसे स्टील का ग्लास तो वही रख सकते हैं जो ऑफिस जाते हैं, वो अपने साथ रखिए, या फिर वो कूलर वाली चाय पीजिए। अब सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलें तो कपड़े या जूट का थैला साथ लेकर जाएं। प्लास्टिक की थैलियां, स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल का पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। चीजों को दोबारा इस्तेमाल करें। गीला सूखा कचरा अलग अलग करें। जरूरत के मुताबिक ही खरीदें। ज्यादा चीजें खरीदने से, कबाड़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अब ई कचरा घटाने हैं, गैजेट्स को रिपेयर कराएं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसाइकिल करें, और काम के जो उपकरण हैं जो ठीक ठाक हैं उन्हें दान भी किया जा सकता है। थोड़ी बहुत चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमने यूज करें, किसी को दे दीजिए, किसी के काम ही आएंगी, क्यों है ना, ठीक बात।

की आवाजों में। अब चल रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तमन मास या मल मास चल रहा है ना, 16 मई से शुरू हो चुका है। अब देखिए कुछ लोगों को पता ही नहीं है, अब बहुत सारी लोग ये सोच रहे हैं। आज मैं मेट्रो में आ रही थी तो कुछ लड़कियां भी यही पूछ रही थी कि यार ये पुरुषोत्तमन मास होता क्या है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास जो कहते हैं, क्योंकि इतना सारा अब सोशल मीडिया है, रील्स हैं, तो लोगों को पता भी चल रहा है कि भाई अधिक मास चल रहा है। अब अधिक मास की सबको ये रहता है कि जिज्ञासा भी है कि है क्या, जिनको पता है उनको पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं, अधिक मास हिंदू कैलेंडर का एक अतिरिक्त महीना है जो हर 3 साल में एक बार आता है। इसे पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से भी जाना जाता है। सरल शब्दों में जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, यानी फरवरी में 29 दिन आते हैं, ठीक उसी तरह हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक पूरा अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, जो इस बार ये ज्येष्ठ का महीना है, यानी जेठ का महीना है, जो 2 महीने का है। अब क्यों आता है? हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की चाल पर आधारित होता है। सौर वर्ष सूर्य का एक चक्र लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है, और चंद्रमा का जो वर्ष है वो एक चक्र लगभग 354 दिन का होता है। अब इन दोनों के बीच का हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ ही जाता है। अगर इस अंतर को ठीक ना किया जाए तो हमारे सभी त्योहार धीरे धीरे अपने मौसम से आगे पीछे हो जाएंगे। इस अंतर को पाटने के लिए हर 32 महीने 16 दिन और 4 घंटे के बाद कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, इसी को अधिक मास कहते हैं। अब पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर महीने का कोई ना कोई स्वामी देवता होता है, लेकिन इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था, कोई देवता नहीं था, तो इसे अपवित्र मानकर मल मास कहा गया। दुखी होकर ये महीना भगवान विष्णु के पास गया, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना उत्तम नाम पुरुषोत्तम दिया। अब कहा कि मैं इस महीने का स्वामी हूँ। भगवान विष्णु का नाम मिलने के कारण ही ये महीना आध्यात्मिक रूप से सबसे पवित्र और फलदायी बन गया। अब फलदायी कैसे? ये महीना पूरी तरह से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। माना जाता है इस महीने में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। इस महीने में केवल आध्यात्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ, भक्ति, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन या नया बिजनेस शुरू करने के लिए मांगलिक कार्य यानी इस महीने में नहीं होते हैं, लेकिन ये महीना सिर्फ पूजा पाठ के लिए है।

और एफएम गोल्ड पे चल रहा है कार्यक्रम घर आंगन। हम आज बात करेंगे हाथ के बने खिलौनों की। अब देखिए, हम इतनी वातावरण को संभालने की बातें कर रहे हैं, आपसे जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनवायरमेंट का आप ध्यान रखिए, तो खिलौने जो हैं वो क्यों प्लास्टिक के या किसी और मटेरियल के लेने हैं। हाथ से बने खिलौने केवल बच्चों के खेलने की वस्तु नहीं होते, बल्कि हमारी कला, संस्कृति और परंपरा का हिस्सा भी होते हैं। भारत में लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, बांस और ऊन के बने खिलौनों की परंपरा बहुत पुरानी रही है। आज के समय में हैंडमेड टॉय बिजनेस भी एक अच्छा रोजगार और स्वरोजगार का माध्यम बनता जा रहा है। अब हाथ के बने खिलौनों के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लकड़ी के खिलौने आते हैं। अब बचपन में हम लोगों ने तो लकड़ी के खिलौने बहुत देखे हैं, आजकल भी मिलते हैं, लेकिन लोग सिंथेटिक खिलौने बच्चों को देना पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लकड़ी के खिलौने जैसे चंड पटना कर्नाटक के रंगीन खिलौने, मिट्टी के खिलौने जैसे गांव और मेलों में लोकप्रिय होते हैं, कपड़े और ऊन के खिलौने जैसे टेडी बियर, गुड़िया, बांस और जूट के खिलौने जैसे जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, शैक्षणिक खिलौने होते हैं, बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने वाले।

आजकल भी मिलते हैं, लेकिन लोग सिंथेटिक खिलौने बच्चों को देना पसंद करते हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लकड़ी के खिलौने जैसे चंड पचना कर्नाटक के रंगीन खिलौने, मिट्टी के खिलौने जैसे गांव और मेलों में लोकप्रिय होते हैं, कपड़े और ऊन के खिलौने जैसे टेडी बियर गुड़िया, बांस और जूट के खिलौने जैसे जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, शैक्षणिक खिलौने होते हैं बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने वाले, पजल्स होते हैं लकड़ी के हाथ से बने खिलौनों की विशेषताएं ये होती हैं कि वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, सुरक्षित होते हैं और प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं। भारतीय संस्कृति की झलक हर खिलौने में अलग और विशेष होती है। छोटे कारीगरों को रोजगार मिलता है, व्यापार की संभावनाएं बढ़ती हैं। आज लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की जगह प्राकृतिक और सुरक्षित खिलौनों को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है, क्यों ये कचरा, इतना प्लास्टिक क्यों वेस्ट जनरेट करना है। इसी कारण हस्तनिर्मित खिलौनों की मांग भारत में और विदेशों में दोनों में बढ़ रही है। अब कैसे व्यापार शुरू किया जाए, आप ये भी तो सोचेंगे। घर से शुरुआत करें, कम पूंजी में छोटे स्तर पर काम शुरू किया जा सकता है। सोशल मीडिया, वेबसाइट और ई कॉमर्स के माध्यम से आप बिक्री की जा सकती है। आजकल तो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जहां अपना बिजनेस आप कर सकते हैं। स्थानीय मेले या प्रदर्शनियां भी लगा सकते हैं। हस्तशिल्प मेलों में स्टॉल लगाकर भी ग्राहक बढ़ाए जा सकते हैं। स्कूल और गिफ्ट शॉप से संपर्क कर सकते हैं। शैक्षणिक और सजावटी खिलौनों की अच्छी मांग होती है। अब खिलौनों की गुणवत्ता अगर अच्छी हो, रंग और सामग्री बच्चों के लिए सुरक्षित हो, आकर्षक पैकिंग करें, सोशल मीडिया पर प्रचार करें, उचित मूल्य रखें और सरकारी सहायता भी मिलती है। जी हाँ, भारत सरकार वोकल फॉर लोकल और हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अधिक जानकारी के लिए आप एमएसएमई मिनिस्ट्री या स्टार्टअप इंडिया इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हाथ से बने खिलौने भारतीय कला और परंपरा की पहचान है। ये व्यापार कम निवेश में शुरू होकर बड़े स्तर तक पहुंच सकता है और ये आपकी शौक भी तो है। ऊन के खिलौने आप बनाइए, कपड़े के खिलौने बनाती रहती हैं लेडीज, बना बना के बुन बुन के थोड़ा फूल थोड़ा कुछ बनाती हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर स्टॉल लगाकर बेचती हैं। ये रचनात्मकता, गुणवत्ता और सही प्रचार पर ध्यान दिया जाए तो ये व्यापार रोजगार और आत्मनिर्भरता का अच्छा माध्यम बन सकता है, क्योंकि कम निवेश में शुरू कर बड़े स्तर पर पहुंचा जा सकता है। कोशिश तो कीजिए।

मासूम फिल्म की रचना आपने सुनी गौरी बपत, गुरप्रीत कौर और वनिता मिश्रा की आवाजों में। अब कुछ भी कहिए, महिलाएं ही घर का केंद्र है, ठीक है ना? क्योंकि अब देखिए, महिलाओं का हमारा कार्यक्रम है लेकिन महिलाएं घर का केंद्र, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जयशंकर प्रसाद जी अपनी कामायनी में लिखते हैं, जी हाँ कामायनी उनका एक महाकाव्य है, उसमें लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी के जीवन में जो प्रफुल्लता, शांति और आनंद है वो उसकी अपनी उपलब्धि है, जी हाँ, क्योंकि वो हर हाल में खुश रहना जानती है। नारी का आनंद बहुत अर्थपूर्ण है क्योंकि वो घर का केंद्र है। महिलाएं जो है वो घर का केंद्र होती हैं। अगर वो उदास हैं, दीनहीन हैं, थकी हुई हैं, हारी हैं, तो सारा घर परिवार उनकी जो परिधि में घूमता है ना, वो उदास और हारा हुआ हो जाएगा। इसलिए महिलाओं का खुश रहना बहुत जरूरी है क्योंकि घर की जो धुरी है, घर का जो केंद्र है, वो महिलाएं हैं। एक स्त्री के जीवन में जो आनंद, शांति और प्रसन्नता होनी चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रही है। स्त्री का सुख अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो घर का केंद्र है। मैं बार बार एक ही बात इसलिए दोहरा रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए और आप खुद भी महसूस कीजिए इस बात को कि आपके घर में जो महिला है वो घर का केंद्र है। यदि वही उदास, निराश या पराजित अपने आप को समझने लगेगी, जिसके चारों ओर पूरा घर, पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द घूमता है, तो सभी उदास और पराजित हो जाएंगे ना, है ना? और भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नारी के महत्व, शक्ति और सम्मान को दर्शाते हुए कुछ श्लोक भी हैं, जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा, आदर, सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारियों का सम्मान नहीं होता वहां कोई भी अच्छा कार्य फलभूत नहीं होता, यानी निष्फल हो जाता है। ऋग्वेद का कथन है कि गृहिणी ही घर कहलाती है, नारी के बिना घर की कल्पना नहीं की जा सकती। जो पुण्यात्माओं के घर में स्वयं लक्ष्मी के रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में, बुद्धिमानों के हृदय में बुद्धि रूप में, और सज्जनों में श्रद्धा और कुल की मर्यादा के रूप में लज्जा रूप में निवास करती है, उसी देवी को हम नमस्कार करते हैं।

आशा भोसले लता मंगेशकर की थी आवाज ही, फिल्म का नाम चोरी चोरी। जी हाँ, आप कैसे बुलाया भी जा सकता है, बुलाया ही नहीं जा सकता घर की महिलाओं को, यही तो उनका स्वरूप है क्योंकि वो घर का केंद्र है। और आज के समय में जो नारी है ना, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से भी चल रही है, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण सबसे प्रमुख विषय है। अब देखिए, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विकसित भारत की नींव बताते हुए इसे लागू करने की दिशा में तेजी दिखाई गई है। आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली बहना जैसी योजनाओं का सक्रिय क्रियान्वयन भी चल रहा है और इन पर काम चल रहा है। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो अपने आसपास के जो दफ्तर हैं वहां पता कीजिए। इसके अलावा छोटे व्यवसायों के लिए भी महिलाओं को बिना गारंटी ऋण सहायता दी जा सकती है। ये सब चीजें ना साइट्स पे उपलब्ध है। आजकल सोशल मीडिया है, आप डिजिटल हो चुका है इंडिया, तो आप गूगल पे या आप किसी भी ब्राउजर पे टाइप कीजिए महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो बिना गारंटी ऋण भी आपको सरकार दे रही है। अब बदलता सामाजिक दृष्टिकोण भी इसमें काम आ रहा है। अब महिलाएं न केवल घरेलू कार्यों तक सीमित है बल्कि वो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। संक्षेप में यानी शॉर्ट में मैं कह सकती हूं कि आज की भारतीय नारी सशक्तिकरण की ओर मजबूती से बढ़ रही है। उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए अभी और भी प्रयास किए जा रहे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन घर में ये सब प्रयास तो चल ही रहे हैं। लेकिन घर में मैंने कहा ना, महिलाएं घर का केंद्र है, उन्हें खुश रखिए। उन्हें अगर खुश रखेंगे

हैं छोटी छोटी खुशियां और इनको बस पकड़ लीजिए। और ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में आज का पंची फिल्म से। मुझे यानी राधा को इस कार्यक्रम से दे इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, कुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11 और 5 सेकंड्स। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर भारतीय संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में। इन्होंने सन 1963 से लेकर 1998 तक तकरीबन 635 हिंदी फिल्मों के लिए संगीत की रचना की और इस समय के लगभग सभी चर्चित फिल्म निर्माताओं के लिए काम किया। इनके द्वारा दिया गया संगीत भारतीय संगीत जगत के लिए एक अनुपम सौगात है।

लक्ष्मीकांत का पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर था। इनका जन्म 3 नवंबर 1937 को लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था। और प्यारे लाल का पूरा नाम प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा था। इनका जन्म 3 सितंबर 1940 को हुआ था। प्यारे लाल वायलिन बजाने में माहिर थे, तो वहीं लक्ष्मीकांत सारंगी बजाने में उस्ताद थे। कहा जाता है कि जब लक्ष्मीकांत 10 साल के थे तो उन्होंने लता मंगेशकर के एक कॉन्सर्ट में, जो कि कोलाबा में हुआ था, उसमें सारंगी बजाई। उनकी प्रस्तुति से लता जी इतनी प्रभावित हुईं कि प्रोग्राम के बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत से बात की।

0: दोस्तों, आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचे गए गीतों के बारे में और उनसे जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही

0: विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं आपका दोस्त राम प्रकाश लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सन 1963 में फिल्म पारस मणि के लिए संगीत की रचना करके अपने करियर की शुरुआत की। यह फिल्म आर्थिक रूप से काफी सफल हुई और इस फिल्म के दो गाने हंसता हुआ नूरानी चेहरा और वो जब याद आए बहुत याद आए सुपरहिट गाने रहे। इसके बाद उन्होंने फिल्म दोस्ती, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आए दिन बहार के जैसी फिल्मों में संगीत देकर संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने फिल्म दोस्ती को 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बम में से एक बना दिया।

एक बार जाने माने संगीतकार मदन मोहन किसी रेस्टोरेंट में रुके हुए थे। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि ये भीड़ मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से ऑटोग्राफ लेने के लिए आई थी। इसके बाद मदन मोहन जी भी ऑटोग्राफ लेने के लिए इस भीड़ में शामिल हो गए। जैसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की नजर उन पर पड़ी तो वो चौंक गए और उन्होंने इस तरह से भीड़ में आने का कारण पूछा। इस पर मदन मोहन जी कहते हैं कि जिन्होंने ये दिल तुम बिन लगता नहीं जैसा गाना बनाया हो, ऐसी जोड़ी का ऑटोग्राफ तो मेरे पास भी होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा गाना जिसके लिए मदन मोहन जी भी ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए, आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी द्वारा रचा हुआ ये बेहतरीन नगमा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कागज कलम नहीं इस बार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल। सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक ऐसे गीत की रचना की जो मेरे लिए, आपके लिए और सभी के लिए बहुत ही खास हो जाता है। आप पूछेंगे कैसे? तो भाई, वो इसलिए कि जन्मदिन चाहे मेरा हो, आपका हो या किसी का भी हो, ये गीत तो हम बजाते ही बजाते हैं। याद आया आपको मैं किस गीत की बात कर रहा हूं? अगर नहीं तो लीजिए ये गीत सुनिए, और अगर आज आपका जन्मदिन है तो मेरी तरफ से ये गीत उपहार के रूप में

दोस्तों, बात करें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की उपलब्धियों की, तो इन्हें कई बार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 2024 में

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा।

0: क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
2: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चार प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविय ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविय ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉ मांडविय ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. The Senate has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today informed that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as a member secretary in the committee. Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day speech from Red Fort last year had announced about the High-Level Committee on Demographic Change. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country. He said strict legal action should be taken against those involved. Mr. Shah stressed that since drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Mr. Dr. S. Jayashankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Yong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jayashankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. Dr. Jayashankar emphasized that Indo-Pacific region must remain a driver for global growth and stability. He said that as maritime democracies, pluralistic societies and market economies, Quad nations share the responsibility towards a free and open Indo-Pacific.
4: Over the past several months, our officials have advanced collaboration across key Quad priorities, including maritime security, critical technologies, economic resilience, and HADR. We have seen encouraging progress

0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना विवेकानंदा केंद्रीय विद्यालय मुक्तो के 8वीं कक्षा के छात्र टाशी गुम्बू से कबीर की साखियां।

0: इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता समाप्त हुआ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:13 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए दिल का रिश्ता फिल्म से चंद नग्मों का। तो आइए शुरू करते हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम दिल का रिश्ता फिल्म का पहला नग्मा के साथ, जिसे स्वर दिया है अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण ने। गीत के बोल है समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, दिल का रिश्ता फिल्म का दूसरा नगमा प्रस्तुत है अलका याग्निक के आवाज में, जिसे शब्दबद्ध किया है शब्बीर विंदा ने और संगीतबद्ध नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, इन्हीं नगमों के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं समाप्त होता है। हम इस कार्यक्रम को लेकर आपसे दोबारा मिलेंगे अगले मंगलवार कुछ और फिल्मी धुनों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:25 होने वाले हैं, तो आइए अब आरंभ करते हैं हमारा अगला साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। अपनी धरती अपने लोग कार्यक्रम के तहत आज सुनिए सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज तवांग मठ के हिंदी अध्यापक शास्त्री लुप्संग तेंज्याल से परम पावन 14वें दलाई लामा के 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर एक व्याख्यान।
1: परम पावन जी की जो 4 मुख्य प्रतिबद्धताएं हैं संजीव रूप से हैं। उनकी पहली प्रतिबद्धता या हम संकल्प कह सकते हैं, परम पावन जी कहते हैं सर्वप्रथम मैं एक मनुष्य हूँ, एक मानव हूँ। एक मानव होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि समस्त मानव जगत में समस्त मानवों को समान रूपेण समान रूप से एक ही रूप से सुखमय जीवन जीने का अधिकार है। और उस सुखमय जीवन का आधारभूत कहे या जल जो है मानवीय मूल्य जैसे कि करुणा, दया, आत्मानुशासन आदि, इन सब सदा सदगुण जो है मनुष्य अंदर के जो हमारे अंदर निहित है, इन गुणों से मनुष्यों को अपने प्रवचन द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने मार्गदर्शन के माध्यम से परम पावन जी लोगों को अवगत कराकर इस विश्व में शांति स्थापित करना ही परम पावन जी का पहला संकल्प या प्रतिबद्धता है। और उनकी दूसरी प्रतिबद्धता जो है परम पावन जी कहते हैं कि दूसरे क्रम पर मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। एक धार्मिक व्यक्ति होने के तौर पर मेरा ये कर्तव्य बनता है, ये मेरा दायित्व बनता है कि विश्व में जितने भी जो धर्म है उनके बीच परस्पर सौहार्द भाव और विभिन्न धर्म अभिलंबियों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव का उत्पन्न कराकर इस विश्व में सर्वधर्म संभाव की जो कल्पना है इस परिकल्पना को साकार करना ही परम पावन जी का दूसरा संकल्प प्रतिबद्धता है। और उनकी ये तीसरी प्रतिबद्धता जो है परम पावन जी कहते हैं कि तीसरे क्रम पर मैं एक तिब्बती हूँ और तिब्बतियों का एक धर्म गुरु हूँ। तिब्बती और तिब्बतियों का धर्म गुरु होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि तिब्बत की संस्कृति, तिब्बत का धर्म, तिब्बत की सभ्यताएं, तिब्बत का पर्यावरण का संरक्षण करना

आज तिब्बती लोग जो है मानसिक प्रताड़न से गुजर रहा है, बोध पीड़ा में है, तो उनके मन में जो पीड़ा है उस पीड़ा को विश्व के स्तर में, विश्व के मंच में वकालत करके पूरे तिब्बतियों को न्याय पूर्वक अधिकार दिलाना पवन जी का तीसरी प्रतिबद्धता है। और उनकी चौथी प्रतिबद्धता जो है, पवन पावन जी कहते हैं कि मैं एक प्राचीन भारतीय विद्या का अनुयायी हूं, उस दृष्टि से मेरा यह कर्तव्य बनता है जो आज भारतवर्ष से विलुप्त हो चुके, जो प्राचीन भारतीय विद्या है जो अमूल्य है, अतुल्य है, पहले जितने प्रासंगिक थे इस विश्व के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज विश्व को उसकी जरूरत है, तो मैं इस भारतीय प्राचीन विद्या जो है उसको भारतीयों के बीच में और खासकर भारतीय युवाओं के बीच में पुनर्जीवित करके विश्व शांति का निम्न रखने का जो संकल्प है, ये परम पावन जी की चौथी प्रतिबद्धता है। और मैं समझता हूँ कि उपरोक्त जो चार प्रतिबद्धताएं हैं परम पावन जी की, ये जो है उनका हम सभी जगतवासियों की, सभी प्राणियों के लिए एक मार्गदर्शन है जो अभूतपूर्व है। पहले किसने ऐसा मार्गदर्शन नहीं किया, इतिहास में कहीं नहीं मिलता है कि इस प्रकार का मार्गदर्शन, ये अभूतपूर्व मार्गदर्शन कह सकता है। तो इस तरह के महान मार्गदर्शन का हमको अध्ययन कर अपने चित्त के अंतर में उसको उत्पन्न कर, अपने दैनिक जीवन में उसको प्रयोग कर, फिर अपने और दूसरों के जीवन को सार्थक जीवन बनाना चाहिए। और मैं अपने पहले विषय को यहाँ रखता हूँ, तो इसके साथ मैं अपने दूसरे विषय उसमें आऊंगा। परम पावन जी ने 2015 में धर्मशाला परम पावन जी के निजी आवास में उन्होंने हमारे ताऊ मठ के भिक्षुओं से कहा था, आज भारत में आने के बाद हम तिब्बतियों ने हर क्षेत्र में विकास करना शुरू कर दिया है और आप मौन भावों ने भी काफी विकास किया है और धर्म के क्षेत्र में भी बहुत विकास कर रहे हैं, वो वाक्य प्रशंसनीय बात है, काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी बात है। और आपके मठाधीश रिंपोचे जी के साथ कुछ देर पहले जब मेरी चर्चा चल रही थी, तब मैंने कहा पूरे हिमालय और तवांग में बहुत सारे छोटे छोटे बौद्ध मंदिर हैं, खासकर आपके तवांग मठ के शाखा के रूप में 16 या 17 की संख्या में छोटे छोटे बौद्ध मंदिर हैं, उन सब को केवल एक छोटा सा बौद्ध मंदिर दर्शन या पूजा पाठ के केंद्र तक सीमित न रख के वहां पर उन सभी जगहों में बौद्ध धर्म के अध्यापन का केंद्र में अगर इन सब छोटे छोटे बौद्ध मंदिरों को तब्दील कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए मैं फिर से आप भिक्षुओं से कहता हूं, इस विषय में आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को आपके जितने भी शाखा के रूप में जितने भी छोटे छोटे बौद्ध मंदिर हैं वहां पर पुजारी के रूप में एक बौद्ध धर्म को जानने वाला भिक्षु को तैनात करना चाहिए और उसके माध्यम से ग्रामीण लोगों तक बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है पहुंचाना चाहिए। और जब ग्रामीण इलाके के जो ग्रामीण वासी जो है, गांव में रहने वाले जो है, और वहां के विद्यार्थियों के साथ उस भिक्षु का संबंध बढ़ेगा और बौद्ध धर्म के विषय में अध्यापन करते हुए बौद्ध धर्म की दिशा में आकर ग्रामीण इलाके के लोगों के अंदर कुछ विकास होता है या बौद्ध धर्म के मौलिक शिक्षा जो है उनको प्राप्त करने के बाद आपको और एक काम करना होगा, उन लोगों को आगे मार्गदर्शन करना, बौद्ध धर्म का अध्यापन करना। तो उसके लिए मेरे द्वारा संपादित एक ग्रंथ है जिसका नाम है बौद्ध विज्ञान तथा दर्शन सिद्धांत समुचे नाम तटकुंती, इसको पढ़ाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर में बौद्ध धर्म के जो विज्ञान है, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसके विषय में बात की है, इसके अंदर में पारंपरिक धर्म के विषय में नहीं है। लेकिन जैसा ही लोग इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे, बौद्ध विज्ञान और बौद्ध सिद्धांत के विषय में जानेंगे, बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना स्वाभाविक रूप से होंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा

अंदर घुसने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके अंदर में श्रद्धा जागेगी। ये मेरा अनुभव है, परम पावन जी कहता है कि ये मेरा अनुभव है, मैंने खुद इस बात को देखा है। इसलिए आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है और इसका अनुसरण करना है, परम पावन जी ने 2015 में कहे थे। और इसके साथ आगे कहते हुए उन्होंने कहा, मुझे यह जानकर के अत्यंत खुशी हुई कि आप मनपा क्षेत्र के जो जितने मनपा वासी हैं उनके बीच आज बोर भाषा के प्रति रुचि बढ़ रही है और बहुत सारे लोगों ने तो उसको पढ़ना भी शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब मैं बोर भाषा को पढ़ने के लिए बोलता हूँ तो अपनी तिब्बती भाषा का प्रचार बिल्कुल नहीं करता हूँ, ऐसा गलतफहमी आप लोगों को नहीं लेना है। ऐसा आरोप मुझे एकाध बार लग भी चुका है। मैं बोध भाषा जो है उसको पढ़ने के लिए इसलिए कहता हूँ, आज इस जगत के अंदर में हमारी आज इस दुनिया की आबादी जो है 7 अरब से भी ज्यादा है और उन लोगों के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है हजारों है, हजार से भी ज्यादा। लेकिन बौद्ध धर्म के उल्लेख संपूर्ण रूप में ना उल्लेख, पूरी तरह से सब शुरू से अंत तक उल्लेख जो है केवल 2 भाषाओं में मिलता है, एक बोधी भाषा एक चीनी भाषा। लेकिन चीनी भाषा जो आज बहुत पुरानी हो चुकी है, कोई भी उस भाषा को नहीं समझ पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में अगर बौद्ध धर्म को किसी भाषा के माध्यम से व्याख्यान कर सकते हैं तो केवल बोधी भाषा है। इसलिए अगर बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्मी लोग हो या बौद्ध धर्म को ठीक तरह से जानने की इच्छा रखते हो, उन लोगों को बोधी भाषा की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं बोध भाषा को पढ़ने के लिए बोलता हूँ। और आगे 2014 में गंडन मठ दक्षिण भारत के हमारे महाविहार गंडन मठ में परम पावन जी ने हम मनबावासियों से कहा था 1959 में, जब मैं अपने देश को छोड़ करके अपने लोगों को चीनी दमनकारियों के हाथ में छोड़ करके भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे, तब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मन दुख से भरा हुआ था। लेकिन भारत की सीमा तवांग के सरजमी में मैंने जैसा ही अपना चरण रखा, मेरी तबीयत में सुधार आने लगी और मेरे मन के बड़े बोझ जो है हट गया, मेरे मन में सुकून मिलना शुरू हो गया। तत्पश्चात भारत में आने के बाद मैंने अपना सर्वप्रथम धर्म प्रवचन जो है तवांग मठ में दिया था। उसी की स्मृति के लिए आपके अरुणाचल के सरकारी प्रतिनिधि एवं मनवासियों के द्वारा मुझे सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को अभिव्यक्त करता हूँ। आप लोगों को पता है छठे दलाई लामा जी का अवतरण तवांग में ही हुआ था, क्योंकि 5वें दलाई लामा के साथ तवांग वासियों का गहरा संबंध था। और आज भी जब मैं तवांग में जाता हूँ तो उर्गीलिंग गोम्पा में जरूर जाता हूँ, क्योंकि वहां पे जाने पर, वहां पे पहुंचने पर मुझे एक विशेष चक्र का अपनापन का महसूस होता है। इस दृष्टि से हम और आपके बीच बहुत ही गहरा संबंध है और हम लोगों की संस्कृति धर्म परंपराएं सभ्यता एक ही है। इस दृष्टि से धर्म संस्कृति का संरक्षण करना संवर्धन करना हम सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है, ये दायित्व बनता है हम लोगों का, हम सब लोगों को मिलकर के इसका संरक्षण करना। इसके लिए आप लोगों को जरूर जोर लगाना चाहिए और पहले तिब्बत में भी आज भारत में भी हमारे जितने भी तिब्बती मठ हैं वहां पर आपके मनबा सन्यासी विद्यार्थी जो है अध्ययनरत है, काफी गहराई से पढ़ाई कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप मनबा वासियों को इस दिशा में सोचते हुए और भी भिक्षुओं को भेजते रहना चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके बच्चे जो है हमारे तिब्बती विद्यालयों में भी आए, क्योंकि उन तिब्बती स्कूलों में उन तिब्बती विद्यालयों में बौद्ध धर्म बौद्ध भाषा के साथ ही साथ अंग्रेजी हिंदी आदि आधुनिक शिक्षाओं को भी पढ़ाया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि ये लाभ जो है आपके बच्चों को भी मिले। वैसे भी आज विश्व की मांग है कि हम लोगों को अपने प्राचीन सांस्कृतिक विद्याओं के साथ में आधुनिक शिक्षाओं को भी बाखूबी जानना, ये आज की मांग है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अपने बच्चे जो है हमारे विद्यालयों में भी भेजें। और 2000

सत्तर में तवांग मठ की इस विशाल कक्ष के अंदर में परम पावन जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन उपदेश दिया था। तब उन्होंने कहा था कि आज रास्ते से आते हुए रास्ते के आसपास मुझे बहुत सारे छोटे छोटे बौद्ध मंदिर जो हैं और देवों की मूर्ति का निर्माण जगह जगह पर देखने को मिला। बहुत अच्छी बात है, ये बौद्ध धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और आपके जिला के जो विकास के मार्ग पर है इसका द्योतक है। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ, हम लोगों को बौद्ध मंदिर जो है बाहर नहीं बनाना है, अपने मन के अंदर में बनाना है, और देव मूर्तियां जो है बाहर नहीं मन रूपी देवालय के अंदर में स्थापित करना चाहिए। जब हम मूर्तियों के भगवान बुद्ध की या अपने मन में अपने हृदय में अवलोकितेश्वर की मूर्ति की स्थापना कर और बुद्धि में मंजूश्री की स्थापना करेंगे, तब जा करके आपके जीवन सार्थक होंगे, दूसरों के जीवन सार्थक होगा और इसी से ही पूरे विश्व भर में सुख शांति अमन चैन की स्थापना होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को अपने मन के अंदर में बौद्ध विहार को स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। और उन्होंने इसके साथ जोड़ते हुए और एक बात कही थी जिसको मैं यहाँ पे कह देना उचित समझता हूँ। परम पावन जी ने यह कहा, हाल ही में एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था, सैलापार करके जब आ रहे थे परम पावन जी तो उन्होंने बहुत सारे याक्स को देखा है वहाँ पे, तो उन यागों को देखते हुए उनके मन में एक खुशी मिली क्योंकि ये तिब्बत का एक विशेष प्रकार का जीव है। लेकिन कुछ देर आगे बढ़ने के बाद परम पावन जी कहते हैं कि मेरे मन में एक परेशानी उठी, मेरा मन परेशान होने लगा क्योंकि इन सब यागों को जो है लोग हत्या कर देंगे, तब क्या होगा, ये सोच करके परम पावन जी का मन जो है विचलित हो गया। और आगे कहते हैं कि यहाँ टाउंग में पहुंचने के बाद ये बात जानकर के बड़ा सुकून मिला मन को कि इन बेजुबान जानवरों की रक्षा के लिए रखवाले के लिए एक संगठन है जो जीव हत्या को रोकने का काम करता है। पवन पावन जी ने ऐसा कहा था। और जब उनका लौटने का समय आया तब उन्होंने कहा था, जो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, उन्होंने कहा था कि आपके मुख्यमंत्री जी ने मुझे वापस टाउंग में आने के लिए न्योता दिया है, आमंत्रित किया है, मैं जरूर आऊंगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कालचक्र का अभिषेक अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगा। तब परम पावन जी ने कहा कि मुझे लगता है कि कालचक्र से बेहतर अगर हम बोधिचार्य अवतार के प्रवचन कर पाएंगे तो ठीक रहेंगे, इस विषय में मैं जरूर सोचूंगा, मैं बिल्कुल वापस लौट करके गाँव में आऊंगा। तो हम सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये परम पावन जी स्वस्थ रहें और बारंबार ताऊ में पधारते रहें और उनके अमृत रूपी वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होते रहे। और मैं अपने बात को संक्षेप बनाते हुए अपने दृष्टिकोण को रखना चाहता हूँ। उपर्युक्त जितने भी बात मैंने यहाँ रखा है उसका संक्षेप रूप मेरा अपना दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण छोटा है तो हो सकता है कि वहां तक ना पहुंचे, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण को रखना चाहता हूँ। परम पावन जी के जो अभी बात जो मैंने रखा उसका सार अगर बताएंगे तो परम पावन जी कहते हैं, हम तवांग वासी जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी है, इसीलिए बौद्ध धर्म का संरक्षण संवर्धन करना हम लोगों का सबसे बड़ा दायित्व है और बौद्ध धर्म का संरक्षण या उसको संवर्धन करने के लिए बौद्ध धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के बौद्ध धर्म का न संरक्षण होगा न उसका संवर्धन होने का संभव है। और बौद्ध धर्म को अमूलचूल जानने के लिए बौद्ध भाषा की आवश्यकता है, इसलिए आप लोगों को बौद्ध भाषा का उचित ज्ञान भी होना है। बौद्ध भाषा को जानते हुए बौद्ध धर्म को आप अमूलचूल समझेंगे, अपने अंदर में समावेश करेंगे, फिर बौद्ध धर्म को जान लेना पर्याप्त नहीं है, बौद्ध धर्म का भावना करना, उसका दयन करना, उसका अभ्यास करना जरूरी होता है। तो बौद्ध धर्म का अभ्यास करते हुए जब हमारे अंदर में करुणा भाव जागेगा और हमारा जीवन करुणामय होगा और दूसरों के लिए हम काम करेंगे, एक दूसरे के प्रति हम सम्मान करेंगे और इससे ही विश्व शांति की स्थापना होगा। और यही दलाई लामा का उद्देश्य है और दलाई लामा का मार्गदर्शन मैं समझता हूँ। और अभी हाल ही में जो एक वीडियो आ रहा है दलाई लामा जी का संदेश है, परम पावन जी कहते हैं कि मेरा जो अवतरण दिवस है इस अवसर

0: आप सब लोग जो है मुझे अपनी ओर से कुछ ना कुछ तोहफा या बैंड देने की इच्छा रखती होंगी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा या बैंड यह होगा कि अगर आप अपने मन में सद्भावना को जगाते हुए, अपने जीवन को करुणामय बनाते हुए लोगों की यथासंभव मदद करेंगे। अगर मदद की संभावना ना हो तो कम से कम लोगों को परेशान न करना। अगर मेरी इस बात को आप अपने मन में रख करके, अपने दैविक जीवन में उतार करके उसका पालन करेंगे तो मेरे लिए आपकी ओर से सबसे बड़ा तोहफा होगा। तो इसलिए मैं इस बात को कहते हुए कि जो परम पावन जी का उद्देश्य जो है हर मनुष्य के अंदर में सद्भावना को जगाना, हमारे जीवन को करुणामय बनाना, इस विश्व को शांतिपूर्ण विश्व बनाना, इस उद्देश्य में हम सब लोगों को सहायक बन करके यथासंभव अपनी ओर से कोशिश करना चाहिए। और अंत में परम पावन जी के दीर्घ आयु अथवा उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति है तो मैं त्रिरत्न से प्रार्थना करते हुए अपना वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज तवंग मठ के हिंदी अध्यापक शास्त्री लोपसंग तिंग्याल से परम पावन 14वें दलाई लामा के 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर एक व्याख्यान। इसी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंदी पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे भारत की सभ्यतागत और विकासात्मक यात्रा का एक परिवर्तनकारी चरण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 26 मई 2014 देश के शासन दृष्टि, नेतृत्व और राष्ट्र संकल्प में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक था, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। उन्होंने कहा है कि बुनियादी ढांचे के विकास, निर्णायक वैश्विक नेतृत्व और मजबूत राष्ट्र सुरक्षा ढांचे से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने भारत ने अभूतपूर्व गति और पैमाने के साथ प्रगति की है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक रिटायर्ड ने आज ईटानगर के ज्योत स्थित जारबोम कामलन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का दौरा किया। राज्यपाल ने जोर देकर कहा है कि लॉ कॉलेज को कानूनी शोध, सामुदायिक कानूनी जागरूकता, तकनीक आधारित कानूनी शिक्षा और नैतिक नेतृत्व को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि विकसित भारत के विजन में योगदान दिया जा सके। उन्होंने संवैधानिक शासन, साइबर कानून, जनजातीय अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सीमा मुद्दों और आदिवासी अधिकारों पर अध्ययन के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही सक्रिय लीगल एड सेल और एआई सहायता प्राप्त कानूनी शोध को बढ़ावा देने की बात भी कही। राज्यपाल ने कॉलेज को हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि इसे उत्तर पूर्व में कानूनी अध्ययन और जनसेवा का एक प्रमुख केंद्र बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ईटानगर में पहली सीएम प्रगति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रमुख विभागों पीएसयूस, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, बिजली, दूरसंचार, तेल क्षेत्र की एजेंसियों और अन्य कार्यकारिणी प्राधिकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक सार्थक समीक्षा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्य भर के जिलों से उपायुक्त भी लाइव जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सीएम प्रगति का उद्देश्य जवाबदेही, गति और लोगों के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आईएमसी ने आज निर्जुली मार्केट कार्यालय से शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए 3 दिवसीय पीएम स्वनिधि स्कीम कैंप का शुभारंभ किया। आईएमसी के डिप्टी मेयर तोकताबिन कामदिन की पहल पर शुरू की गई इस कैंप का उद्देश्य स्थानीय विक्रेताओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कैंप में पहले, दूसरे और तीसरे स्तर के ऋण के लिए आसान पंजीकरण की सुविधा के साथ साथ क्रेडिट कार्ड सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। डिप्टी मेयर ने स्थानीय स्ट्रीट वेंडर्स और नागरिकों से अपील की है कि वे इस कैंप में आकर इन लाभों का अधिकतम उपयोग करें। उन्होंने कहा है कि यह पहल छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। कई पानी जिले के जिला प्रशासन ने आज प्रोजेक्ट श्रवण के तहत एक व्यापक बहुहितधारक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त श्वेता नागरकोटी मेहता ने की, जिसमें मेडिकल अधिकारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तकनीकी कौशल, जोखिम आंकलन, उपकरण और संचालन प्रोटोकॉल से सशक्त बनाना था, साथ ही चयनित गांवों में परियोजना के पायलट चरण को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पायलट चरण तुरंत चयनित गांव में शुरू किया जाएगा, ताकि रजिस्ट्रेशन से लेकर रेफल तक की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके और पूरे जिले के हर गांव में इसे परियोजना का विस्तार किया जा सके। ईस्ट सियांग उपायुक्त सोनालिका जीवानी ने पासीघाट पांगिन सड़क पर हुए नुकसान के संबंध में एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से इस रास्ते का इस्तेमाल न करने की अपील की है। यह एडवाइजरी पासीघाट डिवीजन के लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा स्थिति की रिपोर्ट दिए जाने के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार पासीघाट पांगिन सड़क NH13 पर बिलोंग कालामाटी इलाके में 2+145 किलोमीटर के क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और लगातार चट्टानें गिरने से भी भारी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि इस रास्ते से गुजरने वाले या

0: Adjuvani yesterday issued a travel advisory regarding road damage on Pasighat Phangin Road along NH 13 and urged the commuters to refrain from using the route for travelling. As reported by PWD Executive Engineer of Pasighat Division, the catchment 2+145 km area at Bilong Kalamati portion along Pasighat Phangin Highway is severely affected by landslides and continuous rockfalls due to incessant rainfall for the last 2 days. It is said that there is every apprehension of loss of life and properties of the commuters or vehicles passing through the route. The travel advisory has been served to administration officers of adjoining districts. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे रीजनल न्यूज। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:55 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम कौमे तराने। इस कार्यक्रम के तहत आनंद लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म से। सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम की आवाजों में एक देशभक्ति गीत का, जिसे रचा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म के इस नगमे के साथ ही कार्यक्रम कौमी तराने समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे है, यानी अब वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस्लामपुर बुलढाणा महाराष्ट्र के सहदेव दामोदर, शशिकाला दामोदर, सुमेध कुमार दामोदर और साधना पवन पाटिल के फरमाइशी नगमे के साथ, जो है भ्रष्टाचार फिल्म से, सुरेश वाटकर और अनुराधा पौडवाल के आवाजों में। गीत को रचा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

0: ये तो हुए सुर, अब इन पे बिठाएं बोल। हाँ, तेरे नैना
1: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

श्रोताओं अगला नगमा प्रस्तुत है नथाना पंजाब के हरजिंदर चिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता के फरमाइश पर जो कि है हीरो फिल्म से मनोहर उदास और अनुराधा पौडवाल के आवाजों में। इस गीत के बोल है आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के तहत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला नगमा, लता मंगेशकर और मुकेश के आवाजों में। हसरत जयपुरी द्वारा रचित इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जय किशन ने, जो कि है आ फिल्म से। और इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है वादिंग खेरा पंजाब के मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा से।

साथियों, आपने आनंद लिया। पजोनिया जलाऊ उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चांसोलिया के फरमाइश पर दोस्ताना फिल्म का नगमा किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के आवाजों में, जिसे रचा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। श्रोताओं, लीजिए कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम नगमा प्रस्तुत है सौतन फिल्म से किशोर कुमार के आवाज में। इस गीत की फरमाइश किए हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, पल डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो ने। इस गीत के बोल है सावन कुमार के और संगीत उषा खन्ना का।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033-914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और

वरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से जल्द ही पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9।

0: स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियार पनीर सेल्वम ने रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीते। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची और विश्व योगासन चैंपियनशिप 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को कुश्ती के दाव पेचों के साथ, जहां वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने आज भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्री स्टाइल कैटेगरी में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। जानते हैं आज किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर पहुंचकर तिरंगा लहराया।
1: मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के ओस्कोनबाई एक अब्दिसामतोव को 12-4 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की येरखान अबिल को 7-6 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। 92 किलोग्राम कैटेगरी में पुनीत कुमार को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वे फाइनल में किर्गिस्तान के उलुगबेक सोरोनबेकोव के हाथों 12-1 से हार गए। 125 किलोग्राम वर्ग में लकी को भी रजत पदक मिला, जबकि सचिन मोर ने 86 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के बोबुरवेक रजिमबोएव को 4-1 से परास्त कर कांस्य पदक जीता। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि लगातार वियतनाम में भारतीय पहलवानों का दबदबा जारी है। और अब कुश्ती की रिंग के बाद चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ, जहां आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है। लीग के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और आज पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 12वें ओवर में 3 विकेट खोकर 115 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आप सभी जानते हैं कि इस मैच का विजेता सीधे फाइनल में पहुंचेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता के साथ एक और मौका मिलेगा फाइनल के लिए अंतिम दावपेच लगाने का। आईपीएल के एलिमिनेटर में कल सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे और दूसरे क्वालिफायर में प्रवेश के लिए अपने जोर आजमाते नजर आएंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं दोनों टीमों की तैयारियों का आकलन करती हमारी ये रिपोर्ट।
2: आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में कल सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस नॉकआउट मुकाबले का विजेता आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेले जा रहे पहले क्वालिफायर मैच में हारने वाली टीम से खेलेगा। अगर दोनों टीम के इस सीजन में अब तक के प्रदर्शन की बात की जाए तो एसआरएच लीग स्टेज में तीसरे स्थान पर थी, जिसमें टीम ने 14 मुकाबलों में से 9 मुकाबले जीते थे। वहीं आरआर 14 मुकाबलों में से 8 में जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंची है। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मैचों की बात की जाए तो हैदराबाद का पलड़ा काफी भारी है। दोनों टीमों का अब तक 23 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 14 बार बाजी हैदराबाद ने मारी है, जबकि 9 बार राजस्थान के हाथों जीत लगी है। वहीं इस सीजन के दोनों मुकाबलों में राजस्थान को हैदराबाद से हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो हैदराबाद की मुख्य ताकत उसकी बल्लेबाजी का शीर्ष क्रम है, जिसमें अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन

0: से विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं, जिन्होंने अब तक अपने बल्ले से इस सीजन में खूब धूम मचाई है। क्लासेन अब तक इस सीजन में 606, ईशान किशन 569 और अभिषेक शर्मा 563 रन बना चुके हैं और शानदार लय में हैं। इनके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टन और अनिकेत वर्मा मध्य क्रम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। गेंदबाजी की बात की जाए तो इस विभाग की जिम्मेदारी खुद कप्तान पैट कमिंस के कंधों पर है, जिनको हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और प्रफुल्ल हिंगे का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अपने अंतिम लीग मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली राजस्थान रॉयल्स को सबसे अधिक उम्मीद अपने एक्स फैक्टर युवा वैभव सूर्यवंशी से होगी। वैभव इस सीजन में अब तक 232 की स्ट्राइक रेट से 583 रन बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल भी वैभव का भरपूर साथ देते आए हैं। ऐसे में इस निर्णायक मुकाबले में टीम को इस सलामी जोड़ी से बहुत उम्मीदें होंगी। कप्तान रियान पराग, ध्रुव जुरैल, शिमरॉन हेटमेयर और अनुभवी रविंद्र जडेजा से भी टीम को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जो टीम को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों डिपार्टमेंट में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर टीम के गेंदबाजी क्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अब तक इस सीजन में 21 विकेट झटक चुके हैं, जिनको इस मैदान पर रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे से भरपूर साथ मिलने की उम्मीद होगी। ऐसे में दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर पर सबकी नजरें होंगी, जो मजबूत बॉलिंग लाइनअप को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो लीग राउंड के बाद अब आईपीएल तैयार है नॉकआउट के अपने जलवे के लिए, जहां पर देखना होगा कि कल वैभव जीत का सूर्योदय करते हैं या फिर हैदराबाद जीत का अभिषेक करता हुआ नजर आएगा। और अब कार्यक्रम को लेकर चलते हैं चेस के काले सफेद खानों के बीच चली जा रही चालों में, जहां राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर इनियान पनीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीतकर दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंड मास्टर श्रीहरि ने रजत और जीएम मित्राभा ने कांस्य पदक जीता, जबकि ब्लिट्ज प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिक वर्ग का खिताब अपने नाम किया। उधर नॉर्वे में नॉर्वे शतरंज 2026 की शुरुआत ओस्लो में काफी रोमांचक अंदाज में हुई, जहां आर प्रज्ञानानंदा और विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने अपने मुकाबलों को ड्रॉ के साथ शुरू किया।
2: भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश दोनों ने अपने अपने पहले क्लासिकल मैच ड्रॉ खेले। इसके बाद हुए आर्मागेडन ट्राई ब्रेकर में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल करके अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। वहीं दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन वेन जुन को शिकस्त दी। प्रज्ञानंदा ने आक्रामक प्रदर्शन के साथ ट्राई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, जबकि गुकेश ने क्लासिकल मुकाबले में विंसेंट कीमर के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। कार्लसन पे फिरोजा की जीत दिन का सबसे अहम नतीजा साबित हुई। महिला टूर्नामेंट में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जू वेन जुन को दिव्या देशमुख ने ट्राई ब्रेकर में हरा दिया। वहीं बीबी सारा असो बाएबा ने क्लासिकल शतरंज में भारत की नंबर एक खिलाड़ी कुनेरू हम्पी को मात दी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय ग्रैंड मास्टर नॉर्वे में भी अपनी चालों के बीच तमाम नतीजे लेकर के आते हुए, और अब बात करते हैं सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जो आज से शुरू हो गया है। जानते हैं आज प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा।
3: स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज पांचवी वरीयता प्राप्त कुसुमा वरदानी को सीधे गेम में हराकर सिंगापुर ओपन में महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गयी। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु का अगला मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पुरुष डबल्स जोड़ी भी शुरुआती दौर में चेन जी यी और प्रिस्ली स्मिथ की अमेरिका की जोड़ी को 26-28, 21-15, 21-13 से हराकर अगले दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी अगले दौर में ली झे हुई और यांग पो स्वान की चीनी ताइपे की जोड़ी तथा ली यू यांग और हुआंग डी की चीन की जोड़ी के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगी। एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी 65 मिनट तक चले पुरुष सिंगल्स मुकाबले में विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ 21-11, 14-21, 12-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उन्नति हुड्डा भी महिला सिंगल्स में टोमोका मियाजाकी के हाथों 14-21, 10-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। महिला डबल्स में भारत की कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंधी भी पाउला

0: लोपेज और लूसिया रोड्रिग्स की जोड़ी से हारकर बाहर हो गई। अश्विनी भट्ट के और शिखा गौतम भी चांग चिंग हुई और यांग चिंग टुन की चीनी ताइपी की जोड़ी से हार गईं। ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी ने पुरुष डबल्स में भारत के हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन को हराया, जबकि मिक्स डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे पहले दौर के मुकाबले में यांग पो हान और हु लिंग फांग की चीनी ताइपी की जोड़ी से हार गईं। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और मालविका बंसोड कल अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैंस।
1: और बैडमिंटन के बाद अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की, जहां इस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मार्सेलो डोमिनेनर ने कॉन्स्टेंटिन फ्रेंडजेन और रॉबिन हस की जोड़ी को 6-3, 4-6, 6-3 से हरा दिया है। महिला सिंगल्स में आर्यन सबालेंका का मुकाबला जैसिका के बीच रहा, जिसमें आर्यना ने 6-4, 6-2 से बाजी मारी। भारत के यूकी भावरी और माइकल वीनस की जोड़ी अब से कुछ देर बाद टेनिस कोर्ट में नजर आएगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि भारत की 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। यह खेल 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में पहली विश्व चैंपियनशिप के साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। इस विश्व चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 529 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 114 सदस्यीय भारतीय दल भी शामिल है। श्री मांडविया ने विश्व योगासन चैंपियनशिप की शुरुआत के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि योगासन 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में पारंपरिक खेलों का हिस्सा होगा।
2: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी गेम्स या तो भारतीय स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
1: ये थे खेल मंत्री मनसुख मांडविया। और अब रुक करते हैं रांची का, जहां 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 कल समाप्त हो गई। सुनते हैं हमारे सहयोगी मुनीश शर्मा की एक खास रिपोर्ट।
3: प्लीज स्टार्ट देव, गुरिंदरवीर सिंह गोज प्लेजिंग, इट इज गुरिंदरवीर सिंह, इट इज गुरिंदरवीर सिंह, ही प्लेजेस अवे, दिस इज नॉट फिनिश्ड येट, दैट्स व्हाट ही सेज।
4: गुरविंदर सिंह इस प्रतियोगिता के सबसे चर्चित नाम रहे। गुरविंदर सिंह रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 10.09 सेकंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरी करके स्वर्ण पदक जीतते हुए भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। गुरविंदर की तरह ही अपनी रफ्तार से ऐसा ही एक ऐतिहासिक कीर्तिमान रचा पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में विशाल टीके ने।
3: सो नाउ द फर्स्ट 10 मीटर्स Vishal TK will push himself. Look out for lane number 4 once again. Vishal TK, he's taken that lead out here. Is this going to be a national record? 45.12. He's going blazing away. Vishal, Vishal, and Vishal it is who takes it away. 44.98.
4: विशाल, दिग्गज एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 मीटर में 45 सेकंड की बाधा को पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। विशाल ने 44.98 सेकंड के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। एक और रिकॉर्ड टूटा पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में, जहां देव मीणा और कुलदीप कुमार ने एक रोमांचक मुकाबले में एक साथ 5.45 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक होने का गौरव प्राप्त किया।
3: And it's a national record. It's a national record at 5.42 meters. It's a national record once again out here at the Birsa Munda Stadium. No emotions, no emotions at all from this boy. Into the runway like a 707. There he goes into the skies and he knows that the national record is his.
4: इन तीनों कीर्तिमानों ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में न सिर्फ भारत की बढ़ती हुई धाक को साबित किया है, बल्कि ये बता दिया है कि अब इन खिलाड़ियों की विश्व के कई और स्थापित कीर्तिमानों पर नजर है। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।

0: तो अब भारतीय खिलाड़ियों की नजर सट चुकी है ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के पोडियम की तरफ। और श्रोताओं, अब समय भी हो गया है आपसे विदा लेने का। आप इस कार्यक्रम पर अपने सुझाव और अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद

0: स्वास्थ्य और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को

0: बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
1: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
2: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यम

0: शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center Constitution

पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत कल दोपहर 3:33 पर, शाम 5 मनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम, साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी कल शाम 7:10 पर तथा रात्रि 8 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, तो ये रहे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 मिडडे न्यूज के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री तेंजिन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री कामे यम्फो और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री अंटू कुमार दास तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मुझे यानी हिंदी उद्घोषिका गेंदन धामू को दीजिए इजाजत। समय रात्रि के 9:16 हुए हैं। श्रोताओं, शुभरात्रि, जय हिंद।